0: चिलमन
1: चिलमन चिलमन
0: मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

शाम रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

सबसे कठिन काम कोई है, किसी की समीक्षा कर करके अपने दिल को, दिमाग को और व्यवहार को मंगल में रखना है। किसी की भी आप समीक्षा करोगे, समीक्षा समझते हो ना, टीका, क्या टीका, टीका करने का मीनिंग आपके पास दूसरा है। टीका करने का मीनिंग है कि किसी भी बात की पूरी पूरी अच्छी तरह से एनालिसिस करना। थाने हिंदी में शब्द नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश में समझ में आएगा। समीक्षा करने का मीनिंग है अच्छी तरह से एनालिसिस कर करके उसको वापस सिंक्रोनाइज करना, उसको समीक्षा कहते हैं। और सबसे कठिन काम है अपने दिल को बिना किसी का एनालिसिस करे शांत रखना आसान है, अपने दिल को प्रेम भरा रखना आसान है बिना किसी को समझे। बिना किसी को समझे तुम प्यार कर सकते हो, समझने के बाद प्यार करना। हेलो, दो मिनट के लिए पहले ब्लिसफुल कपल यहां हो गए, अभी और आराम से बोल सकते दोनों तरफ के लोग, शादी के पहले प्यार ज्यादा था कि शादी के बाद प्यार ज्यादा है? हेलो, पहले, कि शादी हो गई कि एक दूसरे को समझना शुरू किया, और समझना शुरू किया तो प्यार गायब हो गया। मैंने कई समझने प्यार करती थी, यानी कई निकले। किसी को समझने के बाद भी प्यार को बरकरार रखना है, ये चैलेंज है। ये भविष्य में मेरे साथ क्या करेगा ये मालूम पड़ने के बाद भी उसके प्रति वही प्यार भरा व्यवहार रखना आसान है, कठिन है। राम कैकेयी को एक दिन पहले जैसा प्यार करता था वैसा ही सेकंड डे भी किया, थर्ड डे भी किया। दशरथ एक घंटे पहले जैसा कैकेयी से प्यार करता था, एक खबर आ गई और प्यार गायब हो गया। मैक्सिमम हम दशरथ बन करके जीते, मैक्सिमम। इसलिए सुधर्मा स्वामी के दिल में जो परमात्मा है, रामेश्वर एक निवेदन करो, सकता था स्पीकर बंद करो, टाक दो, एक स्पीकर कर उठा, बंद करो, टाक दो। हम मैक्सिमम दशरथ बनकर के जीते। छोटी सी बात कोई मन के खिलाफ हो गई, मन के खिलाफ भी नहीं, जैसा हम चाहते वैसा तीर्थेश्वरी ने मेरे साथ नहीं किया कि मूड ऑफ। उसके पहले उसने जो कुछ अच्छा किया वो सब समाप्त। हेलो, ऐसा होता है, ऐसा होता है अपने लाइफ में। और सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के विषय में जो अपनी अनुभूति कह रहे हैं उसके लिए पहला शब्द दिया उन्होंने, से भूई पन्ने। पहले कहा समीख पन्ने, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, बिना समीक्षा करे बिना किसी को जाने प्यार करना आसान है। जानने के बाद प्यार करना मुश्किल काम है। समीक्षा पन्ने, तीर्थंकर के पास समीक्षा की प्रज्ञा है,
लेकिन समीक्षा की प्रज्ञा के साथ दूसरी जो प्रज्ञा है वो भूति प्रज्ञा है, भूई। और भूति शब्द के टीकाकारों ने, शिलंकाचार्य ने तीन अर्थ दिए, जिसकी प्रज्ञा में केवल समृद्धि है, ऐश्वर्य है, जिसकी प्रज्ञा में दरिद्रता को, गरीबी को सोच में, प्रज्ञा में उसकी सोच, उसकी भावनाएं समृद्ध है, और सोच जिसका समृद्ध होता है वो समृद्ध हो जाता है। हम सोच के गरीब हैं, सोच श्रीमंत का हो जाए तो श्रीमंत होते देर नहीं लगती है, लेकिन अपना सोच ही गरीब का है। से भूईपन ने दूसरा अर्थ दिया कल्याण, कल्याण की प्रज्ञा। वो कितनी समीक्षा करेंगे तो उसमें से कल्याण ही निकालेंगे, आनंद की ही अनुभूति करेंगे। किसी की समीक्षा कर करके खुश रहना सबसे बड़ी तपस्या है। कल्याण में रहना, आनंद में रहना। और तीसरा अर्थ दिया हमेशा संरक्षक बनकर के रहना, रक्षक बनकर के रहना। कुछ भी हो जाए तो अपना रक्षा का रोल कंटिन्यू है। ये तीन जिसमें होते हैं उसको भूईपन्ने कहते हैं। और मैं सोचता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी भूईपन्या हो जाए। मेरी मंगल कामना आप सभी के लिए कि आपकी प्रज्ञा भी भूईपन्या हो जाए। ये स्वयं के लिए भी हितकारी है, दूसरों के लिए भी हितकारी है। दुखी होकर के क्या करूंगा मैं? और दुखी होकर के जब भी हम, मैं, कोई भी व्यक्ति दुखी होता है उस समय वो अपने लिए पाप के बीज बोता है। कौन से बीज बोता है? जब भी मैं या आप, कोई भी व्यक्ति दुखी होता है, आपकी धारणा है कि पाप के कारण से दुखी होता है। और सिद्धांत यह है कि जो भी व्यक्ति दुखी होता है वह अपने लिए भविष्य में दुख के बीज बोता है। यदि चाहते हैं कि भविष्य में दुख न हो तो दुखी मत बनो। ये सबसे बड़ी तपस्या है, दुखी नहीं होना है। और कितना जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं गोशालक क्या कर रहा है, क्या करता था, क्या करेगा, जानते हो। लेकिन फिर भी गोशालक के साथ रहते हुए महावीर कभी परेशान नहीं हुए। आप में से, मेरे में से कोई भी हाथ ऊपर नहीं उठा सकता है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ परेशान नहीं होते। मैं भी नहीं ना, मैं भी हाथ नहीं उठा सकता हूं। सच्चाई है, भावना जरूर है कि मैंने और जब भी मैं परेशान होता हूं मेरे लिए मैं पाप कर्म का ही बंद करता हूं। कि परेशान होने का मीनिंग है अर्थ ध्यान करना है, परेशान होने का मीनिंग है रौद्र ध्यान करना है। और अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान चलेगा तो नौकर मंत्र गिन करके कुष्ठ रोग दूर होने वाला नहीं है।
धर्म ध्यान में नौकार मंत्र होगा तो कुष्ठ रोग दूर होगा। अर्थ ध्यान में गिना हुआ नौकार मंत्र पाप की बंध करता है, निर्जरा नहीं। इसलिए पहला शब्द इतना गहरा है, से भूई बनने, उनकी प्रज्ञा कल्याणकारी है, उनकी प्रज्ञा समृद्धि की है, उनकी प्रज्ञा सुरक्षा की है। कुछ भी हो जाए सामने वाले के लिए वो सुरक्षा के बनते हैं। और इसका अगला शब्द दिया से भूई बनने अनियाचारी, इसलिए उनके विषय में तुम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अनियत, हम सब यहां भी चले, नियत का मतलब क्या है? नियत कब होता है आदमी, नियमित कब होता है? जब जिसकी हैबिट हो जाती है। हैबिचुअल होना इसका मतलब नियमित होना। इसलिए मैं पुरुषाकार पराक्रम में या अष्टमंगल ध्यान में जो दूसरे ध्यान की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं, एक समय माते ध्यान करनो, एक जगह माते ध्यान करनो, मैं मना करता कि रोज एक टाइम पर ध्यान नहीं करना है। रोज एक टाइम पर ध्यान कर लिया ना, वो हैबिचुअल हो जाता है। पीछे उठे करिए तो लागे, दूसरे करिए तो नहीं लागे, वो हैबिचुअल हो गए। यानी हैबिचुअल होना यानी होश गंवाना है। आप लोगों की भूख भी हैबिचुअल है, चाय भी हैबिचुअल है। और अनियत आचार्य का मीनिंग है उनका कोई भी व्यवहार हैबिचुअल नहीं है। हम सब हैबिट के कैरेक्टर वाले हैं, हमें सबके क्या है, हैबिट है, हैबिट आदत लगी, बखान सुनन की आदत लगी। एक दिन नहीं सुने तो जिसको चाय नहीं पीने के बाद उसे ना उस बखान आदत लग गई। लेकिन तीर्थंकर महावीर के विषय में कहा जा रहा है, सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि उनको किसी बात की हैबिट नहीं है। और हैबिट नहीं इसका मतलब वो खुले, अपन बंध्या रहा है। से भूई पन्ने अनि आचारी वो वन तरे धीरे अनंत चक्र। सुधर्मा स्वामी के साथ भगवान महावीर की यात्रा करना, इससे बढ़कर के मेरे लिए सौभाग्य की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। ओहन तरह धीरे अनंत चक्षु, ओह यानी प्रवाह, ओह यानी प्रवाह, फ्लो। हम किस में चलते हैं? फ्लो में चलते हैं। इन्फ्लुएंस, हम सारे प्रवाह में चलते हैं और वो प्रवाह के परे हो गए। ओहन तरे फ्लो में नहीं है। थोड़ा सो पूछे सुन, फ्लो में नहीं हुए तो स्वाभाविक को नहीं, और वे फ्लो में नहीं है, वो फ्लो के परे हो गए। ओहन तरे, और जब फ्लो के बाहर हो जाते हैं, क्या सुधर्मा स्वामी ने शब्द दिया है, ओहन तरे धीरे अनंत चक्षु। चक्षु पहले गया, अनंत ज्ञानी, अनंत दंसी, संवदंसी, और आप गया अनंत चक्षु, अनंत आंखें उनको। किसी भी वस्तु को, किसी भी सत्य को देखने के उनके जो रास्ते हैं वे इन्फिनाइट है। अपन दो नजर से देख सका है। उनके पास कितनी आंखें हैं? अनंत आंखें। इसलिए अपने को केवल चंडकोशी के दिखता है, चंडकोशी में जो छिपा हुआ योगी है वो नहीं दिखता है। अर्जुन माली का हत्यारा का स्वरूप ही दिखता है, वो सिद्ध बन सकता है ये नहीं दिखता है।
अपने को देखता है कि सर्वानुभूति अंगार सुनक्षत अंगार ने भगवान महावीर की आज्ञा का उल्लंघन किया के बाटे अपना ने भगवान महावीर मना करिए तो ना क्यों गया बीच में। अपने को आज्ञा का उल्लंघन दिखता है। आपको ये भी दिखता है गौशालों को बचाया सुनक्षत क्यों नहीं बचाया। बो दोनों बंद के लिए एक बंद के लाए हाँ थोड़ा बढ़ू सकते बहु अच्छा है ना। इस निमित्त से मेरे थोड़े से पेशेंस डेवलप हो रहे खुशी की बात है। नहीं थे मैं पहले मैं डिस्टर्ब होता था अब मैंने अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि जब जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अपने को प्रोग्रेस करने का अवसर आता है। हेलो केवल विरुद्ध का गान मत करो विरुद्ध का स्पर्श भी करो। से भूई पन्ने अनि आचार्य वोहन तरे धीरे अनंत चक्कू। हैबिट ब्रेक करो हैबिट ब्रेक करो हैबिट में मत जाओ। जिस समय हैबिट से बाहर निकलोगे तब जाकर के एक अलग पेशेंस आएंगे। प्रवर्तक से जी हाँ विराजमान है और उन्होंने एक बार मुझे पूछा था क्योंकि रास्ता सीधा रहता है हम इचलकरंज जा रहे थे सातारा तब खंबाटा की घाट रास्ते में लगाए। अब प्रवर्तक से जी ऑन रोड और प्रवीण ऋषि जी नहीं नहीं सीधा और जब ऊपर पहुंचे तो दोनों साथ में पहुंचे दोनों साथ में पहुंचे और मुझे देख करके प्रवर्तक से जब मुझे पूछे मने समझ में नहीं आवे शुक्र जो दुख में घरन के थाने कई आदत है हम नेचुरल ना ये रास्ता बिल्कुल अच्छा हाईवे का रास्ता और उसको छोड़ करके अब क्या कहूँ। उत्तर दिया था मैंने उनको मैंने कहा वो समझ में नहीं आएगा आपके अपने बनाए हुए रास्ते पर चलने का आनंद कुछ और ही होता है। रास्ते बनाते हुए चलने का आनंद कुछ और ही होता है। जब भी मुझे जहां भी रास्ते पर ही नहीं जिंदगी में भी ये जितने भी अरम इंजा के कार्यक्रम हैं ये रास्ते पर चलकर तो बन ही नहीं सकते। आप आए नहीं आपने देखा नहीं ब्लिसफुल कपल का शिविर पहले पूरा हुआ है और कल से आज डबल थे। और केवल एक ही बार उनको कहा था कि एक एक कपल को और वो कपल को लेकर क्या है थाने तो थाका कपल ने लावाने दिक्कत जा रही है। और इसलिए कल वो शिविर वहां हुआ था आज शिविर यहां हुआ है। और जो तुम्हें खबर नहीं पड़ी तुम वहां नहीं थे अच्छा रहा उन्होंने मेरे किसी बात पर खुश होकर के तालियां बजाई। क्या बजाई तालियां बजाई अच्छो हुए थे नहीं तो उठे। जर वे तालियां बजाओ तो

शिवाजी महाराज की तरफ देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध की जो फ्लो चला रहा था उसको चेंज कर दिया। गनीमी काम है, गनीमी काम है, जो स्ट्रक्चर इसी चला था ऐसा युद्ध लड़ना छोड़ दिया उन्होंने और नई टेक्निक शुरू करी। नई टेक्निक जब शुरू करोगे तो दिमाग ओपन होता है, अनंत चक्षु। जितने तुम नए रास्ते खोजोगे उतने तुम्हारा दिमाग ओपन होगा और जितने तुम रूटीन रास्ते पर चलोगे उतने तुम आंधे होते जाओगे। वहन धरे धीरे अनंत चक्कु, अनंत चक्षु तभी आएंगे जब ये परंपरा से बाहर निकलेंगे। सुन लो ध्यान से, भविष्य में याद रखना इन शब्दों को। जब तक परंपरा से बाहर निकलते नहीं, पिंजरे से बाहर निकलते नहीं, तब तक खुला आसमान मिलता नहीं। खुला आसमान चाहिए तो पिंजरा छोड़ना ही पड़ता है। परंपरा कितनी ही सुरक्षा देती होगी लेकिन पिंजड़े में कितनी ही सुरक्षा होगी तो पिंजड़ा आसमान छीनता ही छीनता है। पिंजड़े का पंछी निश्चिंत है, ना उसके चुगे की चिंता, उसको चुगा भी वहीं पहुंच जाता है, ना किसी बिल्ली का डर, ना किसी शिकारी का डर, फिर भी कोई पंछी पिंजड़े में खुश नहीं होता है। पिंजड़े के बाहर तो चुग्गे की भी गारंटी नहीं, जिंदगी की भी गारंटी नहीं, फिर भी पंछी आसमान में ही उड़ना चाहता है। हेलो हेलो, खरो बोल रही हूँ खोटो बोल रही हूँ? तो प्रवीण ऋषि पंछी ध्यान रख जाते हैं। अनंत चक्कु, आसमान खुला है। ओहन तरे धीरे अनंत चक्कु, अनुतरे तपये सूर्यवा। और जो जो खुले आसमान में पहुंच गए वे सूरज जैसे तपने लग गए। अनुतरे तपये सूर्य, तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा आगे नहीं चलाते, वो गलत थी ऐसा नहीं, वो गलत थी ऐसा नहीं, भगवान पार्श्वनाथ को उन्होंने गलत नहीं कहा। अपना दिमाग में एक बात बैठे, मुझे पुराना गलत था कि नहीं, पुराना गलत नहीं था, पुराना पुराना जमाने में सही था। तीर्थंकर महावीर ने टोटली नया शुरुआत करी। अनुत्तरम तपई सूर्य, वह अनुत्तर सूर्य के समान तप रहे। यह भी एक परंपरा वाली बात है ना। मुझे को था नहीं क्यों ना, कई लोगों ने फक्त आठे आवन की आदत रहे, अनुतरे तपये सूर्य वा। और आगे बता रहे सूर्य की बात करने वाले, अगली बात बता रहे कि वो वैरोचन इंद्र है तमम पगासे। वैरोचन इंद्र यानी आग, क्या है आग। अब सूर्य का प्रकाश होने के बाद आग की क्या जरूरत है कहने की, लेकिन अंतर है, बड़ा अंतर है। सूरज के रहते हुए अंधेरा तुम्हें नजर नहीं आता है, सूरज के रहते हुए अंधेरा तुम्हें नजर नहीं आता है, और ज्योत जब जलती है तो उजाला भी करती है और अंधेरा भी बताती है। इसलिए शब्द दिया सुधर्मा स्वामी ने, वही रोई निंद

वो तमम पदा से अंधकार को प्रकाशित करते हैं। कोई भी दिया आप जलाओगे तो उस उजाले के चारों क्या दिखेगा आपको? अंधेरा दिखेगा। सूरज रहेगा तब को अंधेरे दिखेगा नहीं, और आग जलेगी तो क्या दिखेगा? अंधेरे। तीर्थंकर कैसे हैं? उनका सूर्य है लेकिन सूर्य के साथ में वो बताते भी है अठे अंधियारो है। सूरज अंधियारा बताता नहीं है, सूरज अंधियारा बताता नहीं है। तीर्थंकर महावीर अंधियारा भी बताते हैं। आपको अंधियारा बताने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है कि उजाला करने वाला अच्छा लगता है? उजाला करने वाला। लेकिन ध्यान में रख जो उजाले के आगे अंधियारा है, उजाले में रहते हुए अंधियारे को देख लोगे, उजाले में रहते हुए अंधियारे को देख लोगे तो अंधियारे में परेशान नहीं होंगे। रिपीटेडली बोल रहा हूं, एल नीनो का प्रभाव इस साल बारिश पर होने वाला है, ये साइंटिस्ट लोगों ने 4-5 महीने पहले से बताया था। ये सुन लो, तो इसकी तैयारी 5 महीने पहले करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए थी? तैयारी कब कर रहे? बोले 5 महीने पहले से ही वाटर का पानी का नियोजन किया होता, उस समय पानी का मिसयूज रोका होता है। आज आप कभी कर रहे हैं? अंधेरा होने के बाद उजाले में रहते हुए अंधेरे में जीने की तैयारी करो तो अंधेरा तुमको परेशान नहीं करता है। इसको कहते वही रोई निंदे वो तमम पगासे।

तो प्रयास करेंगे अपनी प्रज्ञा कैसी हो जाए, कैसी हो जाए, जैसी वैसी रह जाए। हेलो, गुरुदेव के भूति प्रज्ञा के कारण से प्रवीण ऋषि आए। गुरुदेव की भूयी प्रज्ञा के कारण से प्रवीण ऋषि यहाँ पर है। प्रवीण ऋषि के विषय में निगेटिव कंप्लेंट करने वाले गुरुदेव के पास बहुत थे, लेकिन उसके बावजूद गुरुदेव के प्रेम में कोई अंतर है, इसलिए प्रवीण ऋषि आए। डिटेल में नहीं बोल पाऊंगा मैं आपसे, और इसलिए आज उनके जैसी ही विषय आता है तो दिल भर करके आता है।

ऐसी प्रज्ञा मेरी हो जाए, ऐसी प्रज्ञा आपकी हो जाए कि पता चल जाए, पता हो जाए किसने तुम्हारे साथ दगाबाजी करी है, उसके बाद भी अपने प्यार में जो अंतर नहीं आने देते वो भूमि प्रज्ञा है। पता है कि आगे ये दगा करेगा और फिर भी वैसा ही प्रेम जो बरसाते रहते हैं वे भूई पन्ने हैं। पता है कि आज मेरे खिलाफ चल रहा है, फिर भी उस पर जो कृपा बरसाते हैं उसको भूई पन्ने कहते हैं। और तुम्हारा मेरा जो कल्याण होगा वो इसी से होगा। से भूई पन्ने अनि आचारी ओहन तरे धीरे अनंत जको, बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और एक बार इसका मजा चक्कर के देखो आप, एक बार इसका मजा चक्कर के देखो। सामने पहले भी गलत मांगे है, आज भी गलत मांग रहे है, भविष्य में भी गलत मांगन वाला है, और फिर भी उस पर प्रेम बरसाओ तो तीर्थ बन जाओगे। रिपीट कर रहा हूं, पहले भी उसने मेरे साथ गलत किया है, आज भी वो गलत कर रहा है, भविष्य में भी गलत करेगा, फिर भी मेरा प्रेम वैसा ही रहेगा। आपने वो स्टोरी स्कूल में पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी कि संत नदी में स्नान कर रहे हैं और ऊपर पेड़ पर से एक बिच्छू पानी में गिरा है और संत उस बिच्छू को बचाने के लिए उसको हाथ में लेते हैं और बिच्छू डंक मारता है, डंक मारता तो झटका लगता है, बिच्छू वापस पानी में गिरता है, संत वापस उठाते हैं, वो वापस डंक मारता है। मेरे जैसा तुम्हारे जैसा एक सयाना किनारे पर खड़ा था, उसने संत को पूछा, पागल ही कह रहे वो डंक मार रहा है और तुम वापस उसे उठाते हो। संत का जवाब, साथ में लेकर के जाए, मेरे भी साथ में रहे, तुम्हारे भी साथ में रहे। संत ने कहा, वो बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वो बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं संत होकर के अपना स्वभाव क्यों छोड़ू। ऐसे संत के लिए संत तुकाराम ने कहा, देव ते थे ची जाना वाय, देव ते थे ची जाना वाय, तिथस। बाकी तो कपड़े के संत तो लाइन से कुंभ मेला मिल जाएगा, आठे भी मिल जाता है, पर देव ते थे ची जाना वाय। और वो दिन तुम्हारे और मेरे जिंदगी में आ जाए, ये वीरथ की आराधना का छोटा सा लक्ष्य, दो तीन सूचना है। आज गांधी परिवार और गांधी परिवार का ये चतुर्मास का दूसरा मास का मन, पहले कविता का हो गया, अब ये सविता का चल रहा है, ऐसा ही है ना, यो कविता है, पहली सविता हुई, सविता जाठे बैठे आए, अब वो वीता वीता अपना ने कही, वो कंस है ना, और दुई सगी बेना है, दुई बेना छे, इसलिए कि नाराज हो को के कारण को नहीं, सविता ने कविता क्यों की, कविता ने सविता क्यों की, है ना। दो मास का मन बेन ने किया तो मैं क्यों नहीं करूं, इसी दीरानी जेठानी भी है, इसी बेना भी है। अब किसी जगह जको तो लाग रही कहीं मना टे बेना बनने जग रहा है, कही है महावीर प्रफुल, महावीर भाव खड़ो रह जाने, एक कविता सविता किसी जगह, देरानी जेठानी बनने जगह कि बेना बनने जगह, एक करता बेटे बेना बेना है ना, पक्को ना, फिर भी भाई भाई रह जाओ।
इत्री मूर्ति परिवार, करंज का गांधी परिवार, बाबू सेठ ने कहा पचकान कराओ, लेकिन मैं पचकान के पहले जो कहना है वो जरूरी कह रहा हूं। माइनस में से यात्रा शुरू करी हुई है। कहां से शुरू करी है? माइनस से यात्रा शुरू करी है, जीरो से नहीं, माइनस से यात्रा शुरू करी है। और माइनस की यात्रा शुरू करने के बाद आज दाल रोटी खाने सुखी है। मैं पुनः कहता हूं, इस परिवार की स्थिति नहीं है कि 1 CR का डोनेशन डिक्लेयर करें। जो उनको जानते उनको भी पता है, नहीं है स्थिति, लेकिन फिर भी 1 CR डिक्लेयर कर दिया। और केवल डिक्लेयर करके रोका नहीं, मुझे परसों बताया 1 CR के दृष्टि से एक ही पॉलिसी बनाई कि ओवर वर्क करेंगे और ओवर वर्क कर करके राशि, एक्स्ट्रा कमाई की राशि अभी से अलग से बैंक अकाउंट में जमा करनी शुरू कर दी। कुछ बातें जो दिल को छू जाती है। बाबू सेठ ने 1 CR दिया, एक साथ चेक से दिया, अच्छी बात है, लेकिन बाबू सेठ 11 दे सकता नहीं, एक दिया है। और मेरी बात से नगर वाला एक भी हाँ ना नहीं कहेगा। हेलो, बाबू सेठ 11 दे सकता है? ये इसके लिए जिक्र कर रहा हूं, देने की स्थिति थी नहीं, है ही नहीं, और उसके बावजूद हिम्मत थी। और केवल हिम्मत करके रोका नहीं, तो उसकी कीमत चुकानी शुरू कर दी। ये तीनों भाई है, और मंगेलाल जी, और वो डायलिसिस का पेशेंट है। इनका परस्पर का प्रेम हर घर में हो जाए। तपस्या तो ही है, और गुरुदेव के प्रति जो भक्ति, आज से अभी बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं चिचोड़ी था तब भी वहीं पर ये था इसका। इसलिए इस परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन है, तपस्या से भी, सेवा से भी, प्रेम से भी, भक्ति से भी, और समर्पण से भी। हर्ष हर्ष, इनका समर्पण है। बहन का बहुत बहुत अभिनंदन, दोनों बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। पहले एक बहन ने मास कमन किया, दूसरे बहन ने सेवा करी, अब दूसरी बहन ने मास कमन किया, सेवा चालू है। ब्लिसफुल कपल का शिविर चल रहा है, और जवानों ने बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। नई टीम ने काम किया है, कुणाल डुंगरवाल, जिसके कोई समाज में काम करने की हिस्ट्री नहीं है, और पूरे शिविर को उसने सिंगल हैंड आगे लेकर गया है। साथ में अपने दोस्तों को जोड़ लिया उसने। कल 150 थे, आज 300 है। कल 150 कपल थे, आज 300 कपल थे। मेरे पास
थोड़ी सी जानकारी मैं इसलिए पचकान के पहले कुछ बातें जो आपके साथ करनी जरूरी इसलिए कर रहा हूँ। अभी अभी गणेश जी का फेस्टिवल हो गया और गणेश जी के फेस्टिवल की रिपोर्ट मेरे पास आती जा रही है। फनफेयर और हर सोसाइटी में फनफेयर हुआ है और फनफेयर में हर सोसाइटी में सट्टा खेला गया है और सट्टा खेलने में तुम्हारे घर के बच्चे मां बाप के सामने 10-10 हजार 9-9 हजार सट्टे में लगा दिए। ग्यारह 12-13-14-15 साल के बच्चे मेरे पास, दोनों ने बात करी, भाइयों ने भी करी, बहनों ने भी करी। बोले मार साहब, मैंने सिंपल पूछा, पैसे दिए किसने? 13-14 साल का बच्चा कमाता तो नहीं सकता है। और उसके अगले कल जो जानकारी मुझे मिली कि इस उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी कहीं पर भी बेच करके पैसे ले आते हैं। और ये सुन करके तुम्हें, इसके पहले मेरे पास कई केस आकर गई, लेकिन इस बार जो तुम्हारे नगर का मैंने कैरेक्टर सुना, ये फेस्टिवल का एक नया जो डिजास्टर सुना है, पता नहीं ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते गए तो कल समाज का भविष्य क्या होगा। क्वेश्चन है, द बिग क्वेश्चन है। मेरे दादा गुरुदेव के समय में एक क्वेश्चन था कि बच्चे सीखेंगे नहीं तो भविष्य क्या होगा, और उसमें से उन्होंने शिक्षण संस्थाएं शुरू करी। आज डेंजर हो गया, ये सीखे हुए बच्चे सुधरेंगे नहीं तो कल क्या होगा। और इनको सुधारना एक दिन का काम नहीं है। पहले सबसे पहले कोई इस बात के लिए जिम्मेदार है तो पेरेंट जिम्मेदार है। और इसलिए जितने भी यहां पर बैठे हुए स्वयं को सुधरे हुए मां बाप समझने वाले, वे कितने बिगड़े हुए उनको पता नहीं। इसलिए अरहम पेरेंटिंग शिविर ले रहा हूं, रात का समय है, 8:30 से 9:30 का टाइम है, 29, 30 और 1 अक्टूबर दोनों ने आना कंपलसरी, बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है। पेरेंटिंग का शिविर है और उसके साथ में ही उसके बाद तुरंत बाद 2-3-4 अक्टूबर पिछले 2 सालों से 15 साल से लेकर तो 25 साल के बच्चों के लिए राइजिंग सन का कार्यक्रम चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन फिर ऑनलाइन। बाबू सेठ इधर आ, थोड़ा सा सुन ले बात को। मैंने परिशनपुर में ऑनलाइन शिविर लिया बच्चों का, बोलू रे, बोलू। हिम्मत नहीं हो रही है इसलिए। और उस शिविर में जो बच्चे थे, अब उसमें सबका ग्रुप बना हुआ, सभी पार्टिसिपेंट के नंबर शेयर हुए एक दूसरे के साथ, और एक लड़के ने उसकी मां के समान एक बहन को फोन किया। अगली बात तुम्हें कहने की से हिम्मत नहीं हो रही। 4 टाइम मेरे पास पूरा चैटिंग आई, हो गई मेरे पास। और वो लड़का उस बहन को पूछता है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनता हूं। अगला उत्तर सुनोगे तो यही चक्कर आएंगे आपको। उस बहन ने जवाब दिया, मुझे जरूरत नहीं,
बोले रोमांस के लिए,

आगे पीछे की बात तो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या हालत हो गई? सोच भी नहीं सकते हम, इसलिए मैं सबका समय ले रहा हूं। कल शाम को मुझे तृतीय शिष्य ने लाकर के सारी कल्पना दी। आप कल्पना कर सकते हो कि रात मैंने कैसी गुजारी होगी। किस बात की खुशी मनाऊं मैं? तुम्हारे आने की कैसी खुशी मनाऊं? इसलिए आग्रह है आप लोगों से कि पेरेंटिंग शिविर कंपल्सरी अटेंड कराओ मां बाप को। रात का समय है, किसी को एक्सक्यूज देने का कोई टाइम है नहीं। राइजिंग सन 2-3-4 अक्टूबर रेसिडेंशियल शिविर है, 15 साल से लेकर तो 25 साल के लिए। पुरुषाकार का ध्यान शिविर आज शाम को शुरू होने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि पुरुषाकार ध्यान साधना शिविर वो है जिसको हैदराबाद सिकंदराबाद के मुस्लिम लोग करते हैं, और उस शिविर को करते करते उनके डायलिसिस के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, इसकी रिसर्च रिपोर्ट है। और केवल वो ही नहीं, उसका मेडिटेशन करते करते कई मुस्लिम परिवार शाकाहारी हो गए हैदराबाद सिकंदराबाद के। वो पुरुषाकार ध्यान साधना शिविर है जिस शिविर का सर्टिफिकेशन के लिए चिचुंडी में बल्गेरिया की, जिसको हिंदी आती नहीं, वो ट्रेनर बनी है बल्गेरिया से, विरोनिका उसका नाम। और 3 दिन के शिविर के लिए चिचुंडी आई थी, उसके लिए हमको हिंदी में समझाने वाली बहन साथ में देनी पड़ी थी। वो पुरुषाकार ध्यान साधना शिविर है, अष्टमंगल ध्यान साधना शिविर है। अष्टमंगल का एडवांस शिविर है 2-3-4 अक्टूबर को। टीटीपी टीचर ट्रेनिंग का कार्यक्रम ऑफलाइन का 1 सत्र पूरा हो चुका है, वापस दूसरी बैच शुरू करने जा रहा हूं 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। उनका टाइम भी मैंने रात का रख लिया है, वही 8:30 से 9:30 का। आग्रह है कि कार्यक्रम बखान के नहीं है, ये कार्यक्रम चेंज करने के, चेंज मेकर बनने के। जो जो बिलो 40 के हैं वो टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम में जुड़े, जो 15 से 25 साल के बच्चे हैं उनको राइजिंग सन में भेजें। पेरेंटिंग के लिए मैं आग्रह करता हूँ कंपल्सरी शिविर करिए। ये सारी सूचना देने के बाद आप पंचकान पर आ रहा हूँ। मुझे मैं इतनी डिटेल आज तक कभी बोला नहीं आपके साथ शिविर की बात, लेकिन कल की खबर ने, एक तो तुम्हारे गणेश जी के फेस्टिवल में चला गेमलिंग के कार्यक्रम की खबर ने, और कल के ये व्हाट्सएप चैट ने मुझे अंदर से हिला दिया है। और इसलिए मैंने तुमको हिलाने का प्रयास किया है। तुम हिलो, बदलो, तो ही बचेगा, नहीं तो बचना संभव नहीं है। आइए आज के 31 उपास के पंचकार।